0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001237474.org.uk।
2: बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। मैं रोज़गुल बज़्म-ए-नात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ हर जुमातुल मुबारक। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज़ में हमद या नात दूसरों की समातों की नज़र कर सकते हैं। तो सुनते रहिए इंस्पायर FM 105.1
3: एवरी फ्राइडे एट 11 AM।
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
5: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
6: A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم
7: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: ضعف بقلبه وذلك أضعف الإيمان.
1: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001234@court.org.uk.
3: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
4: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.1.

ला इलाहा इल्लल्लाह। समीने करम, दुनिया की रौनकें अपनी जगह, दुनिया के सहारे अपनी जगह, लेकिन जिस दिल को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिल जाए, उसके लिए सबसे बड़ी दौलत नस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम उस दर के सवाली हैं जहाँ से उम्मीदें वाबस्ता हैं, हम उस महफ़िल के दीवाने हैं जहाँ दिलों को सुकून मिलता है, और हमारी सबसे बड़ी आरज़ू यही है कि गुंबद खज़रा को अपनी आँखों से देखें, मदीने की गलियों में हाज़िरी दें और सलाम अकीदत पेश करें। आइए ब्रेक से पहले दुरूद सलाम के साथ की खूबसूरत नात सवामात फरमाते हैं।

ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सामीन कराम, लुटन और गिरदनवा में जहाँ कहीं भी आप इंस्पायर एफएम की आवाज़ सुन रहे हैं, आप सबको जुमतुल मुबारक किस्बा बरकत सुबह बजमेनात की तरफ से दिल की गहराइयों से खुशामदीद। प्यारे सामीन, आज फिर अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन अता फरमाया, एक और जुमा नसीब फरमाया, और सबसे बढ़कर ये सआदत दी कि हम उस वक्त अपने रब की हमद, अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और दुरूद व सलाम के साथ चंद लम्हे गुजार सकें। ज़रा सोचिए, दुनिया की मसरूफियात अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह, घर की जिम्मेदारियां अपनी जगह, लेकिन जब दिल को सुकून चाहिए तो ज़ुबान बेख्तियार किस तरफ जाती है? अल्लाह अल्लाह। और जब मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है तो दिल खुद बहुत कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे सामीन, ये बज़्म नात सिर्फ नातें सुनने का प्रोग्राम नहीं, ये अपने दिल को चंद लम्हों के लिए दुनिया के फ़िक्रों से निकाल कर अल्लाह के ज़िक्र से जोड़ने, दुरूदो सलाम से अपनी ज़ुबान को तर करने और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ज़िंदगी को संवारने की एक छोटी सी कोशिश है। आज आप जहाँ कहीं भी हैं, घर में, काम पर, गाड़ी में, सफ़र करते हुए, दुकान पर या किसी मसरूफियत में, चंद लम्हों के लिए दिल को इस महफ़िल में शामिल कर लीजिए। और जो बाइक गाड़ी चला रहे हैं वो अपनी नज़रें और तवज्जो सड़क पर रखें, दुरूद दिल ही दिल में पढ़ते रहिए, सफ़र भी महफूज और ज़िक्र भी जारी। आइए सब से पहले अपने रब करीम का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, इस रब का शुक्र जिसने हमें ज़िंदगी दी। अल्हम्दुलिल्लाह, इस रब का शुक्र जिसने हमें ईमान की दौलत दी। अल्हम्दुलिल्लाह, इस रब का शुक्र जिसने हमें जुमा जैसा बबरकत दिन अता फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह, इस रब का शुक्र कि हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। या अल्लाह, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। या अल्लाह, जो सामने इस वक्त खुश है उसकी खुशी सलामत रख। जो परेशान है उसकी परेशानी दूर फरमा। जो बीमार है उसे शिफा अता फरमा। जो रिज़्क की तलाश में है उसके रिज़्क में बरकत अता फरमा। जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद है उसकी औलाद को नेक, सालहे और कामयाब फरमा। और या अल्लाह, हमारे घरों में ईमान, सेहत, सलामती, मोहब्बत और सुकून अता फरमा। शायर लिखता है कि अब तंगी दामा पे न जा, और भी कुछ मांग, हैं आज वो मायले बता, और भी कुछ मांग।

जो कुछ तुझे मिलना था मिला और भी कुछ मान। हर चंद के मौला ने भरा है तेरा कशकोल, कम जर्फ न बन और भी कुछ मान।

ऐ मौला मेरे, ऐ मौले है मेरे इला, सुन मेरी दुआ, सुन मेरी सदा। सामीन करम, आज की इस बज़म का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आसानियाँ नसीब फरमाएँ और आसानियाँ बांटने की तौफीक नसीब फरमाएँ। इंशाल्लाह अगले जुमातुल मुबारक फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
2: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Farsi, Imam, Quranic reciter, and nasheed artist from Kuwait, with English translation.

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001234,
2: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं, और फिर जोनसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।